0: कंप्यूटर वाली जॉब होनी चाहिए, कंप्यूटर आंदा नहीं है जी,
1: आंदा नहीं है।
0: तो कितना पॉसिबल हो सकता है कि वह 12वीं तो बाद एक अच्छी जगह पे सेटल हो सकते हैं?
1: सही गल
0: बिल्कुल
1: है।
0: नहीं है।
1: हाँ जी
0: हाँ कुछ कोर्सेज ऐसे हैगे ने
1: हाँ
0: जेडे वो
1: जी
0: करके 12वीं या फिर 12वीं तो बाद ग्रेजुएशन दे नाल नाल अगर वह चीजा कर लैन तो वह बिल्कुल जल्दी, बहुत ही जल्दी सफलता हासिल कर सकते हैं, तो मैं वो जरूर इतनी डिस्कस करना चाहूंगी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जिवें कि बच्चा 10वीं या 12वीं पढ़ता है और उदा एम है गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उन्हें सरकारी नौकरी लेनी है,
1: हाँ
0: ठीक है,
1: जी
0: तो या फिर बस उन्हें नौकरी लेनी है,
1: हाँ
0: मान
1: जी
0: लो
1: हाँ
0: कोई
1: जी
0: भी बच्चा उन्हें नौकरी लेनी है,
1: नौकरी
0: बस
1: लेनी है।
0: नौकरी लेनी है,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: उदे लिए देखो सब तो बेस्ट ऑप्शन की है कि वो 12वीं तक अगर वो आर्ट्स दे विच पढ़ना है, सही मान लो कि वो स्टडीज दे विच ठीक ठाक है पढ़ने लिए, ठीक है, वो आर्ट्स दे विच प्लस टू कर रहे हैं,
1: हाँ जी
0: उस तो बाद वो ग्रेजुएशन करेगा, तो उदे कोलो 3 साल दे विच अगर वो 3 साल अपनी ग्रेजुएशन दे नाल नाल
1: हाँ जी
0: कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दी तैयारी करना शुरू कर लवे, जेडे कि
1: अच्छा जी
0: एसएससी दे थ्रू हुंदे हैं या फिर बैंक एग्जाम हुंदे हैं, बैंक दे क्लैरिकल दे एग्जाम हुंदे हैं, बैंक पीओ दे एग्जाम्स हुंदे हैं,
1: हाँ
0: ठीक है,
1: जी
0: तो उन्हां दी तैयारी करना शुरू कर लवे बच्चा, तां
1: ठीक
0: भी
1: है जी
0: बहुत बेस्ट है, क्योंकि देखो 3 साल जेडे ग्रेजुएशन बेसिस दे जिन्ने भी टेस्ट मैं तुहानू दस रही हां हुण, तां
1: हाँ
0: सारे
1: जी
0: ही मोस्टली जेडे हैं इन्हां दा सिलेबस जेड़ा है तकरीबन तकरीबन सेम ही हुंदा सब दा,
1: अच्छा जी
0: तां रीजनिंग पार्ट हो गया, जीके, करंट अफेयर, इदां दा ही सिलेबस, थोड़ी बहुत ही वेरिएशन जरूर हुंदी है बट इह सारा सिलेबस जेड़ा इन्हां दा सेम ही हुंदा है।
1: अच्छा जी
0: अगर बच्चे अपने 3 सालां दी ग्रेजुएशन दे नाल हर रोज 2 घंटे खुद सेल्फ स्टडी करके उस सिलेबस जो जेडे जिन्ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आंदे ने सब दा सिलेबस ले लैन,
1: हाँ जी हाँ जी
0: तकरीबन तकरीबन जेड़ा कि सेम ही है, वो 2 घंटे भी उस तैयारी उसकी तैयारी 3 साल तक करनगे, तो तुसी अंदाजा लगा लो कि उन्हां दे जो सक्सेस चांसेस हैं वो किन्ने ज्यादा वध जाएंगे,
1: बिल्कुल जी
0: सिलेक्शन
1: बिल्कुल
0: दे चांसेस किन्ने ज्यादा वध जाएंगे।
1: सही गल है जी
0: हाँ तो वो ग्रेजुएशन दे नाल नाल कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी तैयारी जरूर करना शुरू कर दें,
1: बिल्कुल जी। एक
0: बट
1: मैडम हाँ जी
0: हाँ जी, बट अगेन ना अपने च ये चीज दी कमी है साडे मोस्टली जेड़ा साडा पेंडू तबका है, साडे जेड़े विलेजेस च रहंदी यूथ है
1: हाँ जी
0: उन्हां नू ना इस चीज दी अवेयरनेस ही नहीं है कि केड़े केड़े सरकारी नौकरियां निकलदियां ने, केड़े केड़े टेस्ट हुंदे ने सरकारी नौकरियां नू लैण दे लई, ठीक है, तां ओह चीज दी अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है।
1: हाँ बिल्कुल ये तो जरूरी है जी पता ही
0: हाँ
1: नहीं है
0: जी
1: तो करेंगे की
0: हाँ बिल्कुल, तां हुण जेड़ा मैं तुहानू पहलां सब इस दे बिटवीन ही मैं तुहानू इक साडा जो एक्टिविटी शेयर कीती सीगी कि असी अपने कैंडिडेट्स दी लिस्ट निकालदे आं और उन्हां नू अवेयर करदे आं, उन्हां नू बल्क मैसेजेस दे थ्रू उन्हां नू अवेयरनेस दिंदे आं कि
1: हाँ
0: ए
1: जी
0: वाले टेस्ट निकले हुए ने तुसी अप्लाई कर सकते हो,
1: अच्छा जी
0: तां इसी तरीके दे नाल ए चीज दे विच असी कम कर रहे हां, बट यही है कि साडे कोल जद तक यूथ खुद चल के साडे कोल आके पुछेगी नहीं या उन्हां दे खुद अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं होएगा कुछ करन दा, तां उदों तक साडियां जेहड़ियां कोशिशां नहीं कामयाब नहीं हो
1: नहीं हो
0: सकदियां जब तक
1: सकदियाँ
0: यूथ खुद नहीं मोटिवेट हुंदी कम करन दे लई या
1: बिल्कुल जी
0: फिर तैयारी करन दे लई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी।
1: बिल्कुल जी मैडम साहिबाना जी तुहाडियां गल्लां बड़ियां कीमती ने जो लगातार सुनते रहना चाहिए है पर समा जिड़ा हैगा वो सानू इजाजत नहीं दिंदा कि आपां
0: हाँ जी
1: होर इन्हां गल्लां नू सुनते रहिए ये गल्लबात आपां करते रहिए विचार चर्चा करते रहिए। सो अज दा जिहड़ा समा साडा वो समाप्त हुंदा है। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद तुसीं बड़ियां कीमती गल्लां साडे स्रोतियां दे नाल सांझियां कीतियां।
0: जी
1: हुण वेला हो गया प्रोग्राम नूं समाप्त करन दा।
0: हाँ
1: रेडियो दुआबा
0: हाँ जी
1: ते स्रोतियां दा मैं धन्नवाद करदा जिन्हां ने साडे प्रोग्राम नूं बड़े वधिया तरीके नाल सुणिया ते उम्मीद करदे हां इन्हां गल्लां नूं सुण के इन्हां नूं अपना के ते अपनी जिहड़ी जिंदगी है अपना भविख है उहनूं बेहतर बनाउण वल वधोंगे। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद शुक्रिया जी।
0: थैंक यू सर, थैंक यू।

0: करके उस सिलेबस जो जेडे जिन्ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आंदे ने सब दा सिलेबस ले लैन,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: तकरीबन तकरीबन जरा कि सेम ही है। ओ 2 घंटे भी उस तैयारी उसकी तैयारी 3 साल तक करनगे तो तुसी अंदाजा लगा लो कि उन्हां दे जो सक्सेस चांसेस हैं वो किन्ने ज्यादा बढ़ जाएंगे,
1: बिल्कुल जी,
0: सिलेक्शन
1: बिल्कुल
0: दे चांसेस किन्ने ज्यादा बढ़ जाएंगे।
1: सही गल है जी।
0: हाँ तो वो ग्रेजुएशन दे नाल नाल कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी तैयारी जरूर करना शुरू कर दें।
1: बिल्कुल जी, एक
0: बट
1: मैडम, हाँ जी,
0: हाँ जी, बट अगेन ना अपने च ये चीज दी कमी है साडे मोस्टली जेड़ा साडा पेंडू तबका है साडे जेड़े विलेजेस च रहंदी यूथ है
1: हाँ जी,
0: उन्हां नू ना इस चीज दी अवेयरनेस ही नहीं है कि केड़े केड़े सरकारी नौकरियां निकलदियां ने, केड़े केड़े टेस्ट हुंदे ने सरकारी नौकरियां नू लैण दे लई। ठीक है, तो वो चीज दी अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है।
1: हाँ बिल्कुल, ये तो जरूरी है, जे पता ही
0: हाँ
1: नहीं है
0: जी
1: तो करेंगे की।
0: हाँ बिल्कुल। तां हुण जिहड़ा मैं तुहानूं पहलां सब इस दे बिटवीन ही मैं तुहानूं इक साडा जो एक्टिविटी शेयर कीती सीगी कि असीं अपने कैंडिडेट्स दी लिस्ट निकालदे हां और उन्हां नूं अवेयर करदे हां, उन्हां नूं बल्क मैसेजेस दे थ्रू उन्हां नूं अवेयरनेस दिंदे हां कि
1: हाँ
0: ए
1: जी,
0: वाले टेस्ट निकले हुए ने तुसीं अप्लाई कर सकते हो।
1: अच्छा जी,
0: तां इसी तरीके दे नाल ए चीज दे विच असीं कम कर रहे हां। बट यही है कि साडे कोल जब तक यूथ खुद चल के साडे कोल आके पुछेगी नहीं या उन्हां दे खुद अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं होएगा कुछ करन दा, तां उदों तक साडियां जेहड़ियां कोशिशां नहीं कामयाब नहीं हो
1: नहीं हो
0: सकदियां जब तक
1: सकदियाँ।
0: यूथ खुद नहीं मोटिवेट हुंदी कम करन दे लई या
1: बिल्कुल जी,
0: फिर तैयारी करन दे लई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी।
1: बिल्कुल जी। मैडम साहिबाना जी, तुहाडियां गल्लां बड़ियां कीमती ने, जो लगातार सुनते रहना चाहिए है, पर समा जिहड़ा हैगा वो सानू इजाजत नहीं दिंदा कि आपां
0: हाँ जी
1: होर इन्हां गल्लां नू सुनते रहिए, ये गल्लबात आपां करते रहिए, विचार चर्चा करते रहिए। सो अज दा जिहड़ा समा साडा वो समाप्त हुंदा है। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं बड़ियां कीमती गल्लां साडे स्रोतियां दे नाल सांझियां कीतियां।
0: जी
1: हुण वेला हो गया प्रोग्राम नूं समाप्त करन दा। रेडियो
0: हाँ
1: दुआबा
0: हाँ जी
1: ते स्रोतियां दा मैं धन्नवाद करदा जिन्हां ने साडे प्रोग्राम नूं बड़े वधिया तरीके नाल सुणिया, ते उम्मीद करदे हां इन्हां गल्लां नूं सुण के, इन्हां नूं अपना के, ते अपनी जिहड़ी जिंदगी है, अपना भविख है, उहनूं बेहतर बनाउण वल वधोंगे। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद, शुक्रिया जी।
0: थैंक यू सर, थैंक यू।

का सफर, आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना, हाँ जिंदगी ये

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये कह

एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी।

0: करेगा और अपनी एडवरटाइजमेंट उन्हां दी वीडियोस वगैरह दे विच पाणी शुरू कर देंगे। हाँ,
1: जी
0: इस दे थ्रू भी तुहाडा इनकम दा सोर्स जो है जनरेट हो जाएगा एक।
1: साढ़े नौजवानों को ये भी दसन की गल है, देखो भी जेडे कलाकार ने वो आपस के बच्च एक दूजे ने विवाद छेड़ते इस तरह गल्लां करते हैं, एक दो कलाकार जेडे एक दूजे के विरुद्ध बोलते हैं तो नौजवान उन्होंने हाँ च हाँ बुलाते उन्होंने पिछे लड़ाई झगड़े करते हैं, पर उन्होंने व्यू बढ़ते हैं, वो सिर्फ इस चीज़ का फायदा लेंगे ने नौजवानों मगर ला के भी ये कोई विवादित गल करके किसी प्रति, तो नौजवान उन्होंने देखते हैं उन्होंने व्यू भी बढ़ते हैं तो वो कमाई कर रहे हैं, ये अपना जो है एनर्जी समा पैसा वो इधर
0: सब
1: व्यस्त
0: हांजी
1: करते हैं।
0: बिल्कुल, मैं इस पक्ष दे विच नहीं हाँ कि साडे अज दे जो नौजवान है वो इन्ना ज्यादा एक्टिवली या फिर इमोशनली किसे किसे भी कलाकार नाल किसे भी नाल अटैच्ड होन,
1: हाँ जी
0: क्योंकि एक तो बेसिकली उन्हां दी जो उम्र है इस टाइम ते जो एक नौजवान पीढ़ी है साडी, उन्हां नू सब तो ज्यादा उन्हां दे लिए प्रायोरिटी उन्हां दा फ्यूचर होना चाहिदा है।
1: बिल्कुल
0: जो
1: जी
0: लोग अपना फ्यूचर बना के ऑलरेडी सेट हो चुके ने, जिदा कि साडे तुसी कह रहे हो कि कलाकार हैं या जो भी हैगे हैं अपने
1: हाँ जी
0: सेलिब्रिटीज हैं या व्हाटएवर, तां ओदा एक तरह नाल अपना फ्यूचर करियर सब कुछ बना के सेट नहीं ऑलरेडी, उना ओना दे पिछे अपना टाइम वेस्ट करन तो अच्छा है ओना दे पिछे अपने अपने रिलेशंस अपने फ्रेंड्स नाल लड़ाई झगड़े करके मतलब
1: हाँ
0: दूरियां
1: जी
0: बना नालो अच्छा है कि तुसी अपने फ्यूचर दा कुछ कर लो।
1: बिल्कुल
0: जिन्ना देर तुसी एक सोशल मीडिया अकाउंट दे उपर किसे कलाकार दा या किसी भी सेलिब्रिटी दा कुछ भी रिव्यू पढ़ रहे हो या फिर वीडियो देख रहे हो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तां ओ ठीक है तुसी एक एंटरटेनमेंट पर्पस दे लिए देखो उन्हूं उत्थे ही छड़ दो,
1: बिल्कुल जी
0: डोंट टेक इट पर्सनली, उस नू
1: बिल्कुल
0: पर्सनली ना लो, उस नू इमोशनली उस दे नाल अटैच होने की कोई लोड़ नहीं है, उस नू तुसी अपने नाल मतलब उस नू सिर्फ तुसी एक एज अ एंटरटेनमेंट सोर्स यूज करो, नॉट फॉर तुहाडे जो इमोशंस है उन्हां दे नाल लिंक ना करो कदे भी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: तुहाडे जो इमोशंस है वो तुहाडी फैमिलीज लई होने चाहीदी है, तुहाडे करियर लई होने चाहीदी है, तुहानू जो तुहाडा प्राइम मेन फोकस होना चाहीदा वो तुहाडा करियर होना चाहीदा है।
1: बिल्कुल
0: अपने
1: जी
0: करियर दा एक गोल एक एम सेट करो, कोई अच्छी पोजीशन ते पहुंचो, कुछ ऐसा करो जिदे नाल तुसी अपनी सोसाइटी नू प्रोग्रेस कर सको अपनी फैमिलीज नू प्रोग्रेस च लेके आ सको।
1: हाँ जी मैडम तुसी बहुत वधिया विचार मीडिया के खेत्र संबंधी पेश किए, नौजवानों ने एक वधिया दिशा दिती, असी तुहाडा धन्नवाद करते हैं, तो अखीर दे विच मैं चाहांगा भी जे कोई होर तुसी गल खास गल इस खेत्र बारे करनी चाहो तां जरूर सांझी करो एक मिनट दे विच।
0: थैंक यू, मैं भी बहुत धन्नवाद करदी हां जी दुआबा रेडियो दा कि तुहानू तुसी मैनू मौका दिता तुहाडे नाल जुड़न दा और नौजवानां तक अपने व्यूज पहुंचाण दा,
1: हाँ जी
0: ते मेरा जो नौजवान पीढ़ी है साडी उहनां दे लई यही एक लाइक एक मैं तो उहनां नू सिर्फ एक यही चीज दसना चाहांगी कि तुहानू सब तो पहला उहनां लई अपना एम और अपना फ्यूचर सिक्योर करना प्राइम फोकस होना चाहिदा है। सब तो पहला तुसी अपना फ्यूचर सेट करो, उस तो बाद कोई भी नेक्स्ट जो स्टेप है तुहाडे लई जरूरी होएगा। सब तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुहानू अपने फ्यूचर नू अपने करियर नू ही देनी चाहीदी है।
1: हाँ जी
0: धन्यवाद जी।
1: बिल्कुल ये तो हैगा ही है जी। मैडम एक बार फिर तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं, तो तुसीं साडे नाल विचार सांझे किए बड़ियां कीमती गल्लां कीतियां ने, मैं समझदा जिहड़े साडे स्रोते ने वो इन्हां गल्लां नूं गंभीरता नाल इन्हां बारे सोचणगे विचारणगे तो अपनी जिंदगी दे विच अपनाउणगे, तो मीडिया दे खेत्र नूं अपना के इस खेत्र दे विच अपना भविख संवारन लई यतन करनगे, तो मैं समझदा जिहड़ा मीडिया दा खेत्र है ये अज दी नौजवान पीढ़ी दे लई बहुत ही वधिया खेत्र है जिथे वह अपना भविख बड़े वधिया पासे लैके जा सकते हैं, तो नाल नाल जिहड़ी है इस खेत्र दे विच सानू जिहड़ी हैगी पब्लिक दे विच एक नवीं पहचान भी मिलती है। मैडम साहिबाना जी एक बार फिर तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी, हुण वेला हो
0: धन्यवाद
1: गया है प्रोग्राम समाप्त करन दा, अगली बार फिर मिलांगे, तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद दुआबा रेडियो उत्ते प्रोग्राम सिक्ख्या ते रुजगार दे विच।

0: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
1: ਦੀਪ ਰਾਜਗੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਹਿਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਖੈਰਨਿਊ ਮਹਿਕ ਜੀ ਨੂੰ। ਖੈਰਨਿਊ ਮਹਿਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਖੈਰਨਿਊ ਮਹਿਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ। ਟੁਡੇ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਮਾਈ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਰੈਮਨੈਂਟ, ਦ ਸਵੀਟ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਮੈਮੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਬੀਨੀਥ ਦ ਆਰਚ ਲੈਂਪ। ਦ ਪੋਇਮ ਗੋਜ਼ ਐਜ਼, ਦ ਲੈਂਡ ਵੇਅਰ ਆਈ ਸਪੈਂਡ ਹੈਪੀ ਆਰਸ, ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਦੋ ਕੀਪ ਹੌਂਟਿੰਗ ਵਿਦ ਹੈਪੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆਫ ਹਾਊ ਆਈ ਰੈਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡ, ਆਫ ਹਾਊ ਆਈ ਸੈਟ ਇਨ ਅ ਕੋਰਨਰ ਐਂਡ ਸੈਂਗ ਮੈਰਲੀ ਹੈਪੀ ਸੌਂਗ, ਆਫ ਹਾਊ ਦ ਫੋਕ ਟੇਲਸ ਆਰ ਰੀਟੋਲਡ, ਇੰਡਿਊਸ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਵਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ to know more of the folklores. Beneath the arch lamp that lightened the whole vicinity, neither I nor my comradery were in a hurry to head home. Stumble and regain consciousness, make me ponder, had I been young, would anything change? I wonder, still and still, with the same sweetness of infantile mindset, do not hold anymore. Thank you.
1: ਖੈਰਨਿਊ ਮਹਿਕ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਬਸਤੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰਾ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। जी आए
3: दो आवा रेडियो के सभी श्रोताओं को दिया शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी श्रोताओं को दीपावली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने अपनी एक रचना लेकर जो दीपावली से ही संबंधित है। आशा करती हूँ आप सभी श्रोताओं को पसंद आए। परित्यक्त राह पर दिया जलाकर, परित्यक्त राह पर दिया जलाकर पथ प्रकाशित कर देना, अव्यक्त भावों के लिए दिया जलाकर मन को उल्लसित कर लेना, परित्यक्त राह पर दिया जलाकर पथ प्रकाशित कर लेना, अव्यक्त भावों के लिए दिया जलाकर मन को उल्लसित कर लेना, खोए बचपन के लिए दिया जलाकर, खोए बचपन के लिए दिया जलाकर भाव सुगंधित कर लेना, खोए बचपन के लिए दिया जलाकर भाव सुगंधित कर लेना, माता पिता के लिए दिया जलाकर आशीर्वाद सुरक्षित कर लेना, माता पिता के लिए दिया जलाकर आशीर्वाद सुरक्षित कर लेना, सीमा प्रहरियों के लिए दिया जलाकर, सीमा प्रहरियों के लिए दिया जलाकर सुरक्षा अपेक्षित कर लेना, सीमा प्रहरियों के लिए दिया जलाकर सुरक्षा अपेक्षित कर लेना, श्रमिकों कृषकों के लिए दिया जलाकर, श्रमिकों कृषकों के लिए दिया जलाकर आजीविका अनुबंधित कर लेना, जन जन सब जीव जंतु प्रकृति के लिए, जन जन सब जीव जंतु प्रकृति के लिए दिया जलाकर मन आनंदित कर लेना, देश धर्म रिश्ते नातों के लिए, देश धर्म रिश्ते नातों के लिए दिया जलाकर कर्म प्रशंसित कर लेना, कर्म प्रशंसित कर लेना, परित्यक्त राह पर दिया जलाकर पथ प्रकाशित कर लेना, अव्यक्त भावों के लिए दिया जलाकर मन को उल्लसित कर लेना। धन्यवाद।
1: प्रिया शर्मा तों बाद हुण मैं तुहाडे सन्मुख दुबई वसदे साडे शायर सुखराज सिकंदर जी नूं गुजारिश करांगा कि ओह अपनी रचना लैके हाजिर होण। सुखराज सिकंदर जी जिहड़ी इस वार अपनी रचना लैके हाजिर हो रहे ने, ओह जदों मनुख इस संसार चों कूच कर जांदा है ते उस समय उस नाल किस तरह कोई हित प्यार जिहड़े आ सांझे हुंदे ने, इस जिहड़ा आ पलां नूं सुखराज सिकंदर ने फड़न की कोशिश की है। सुखराज सिकंदर जी थोड़ा स्वागत है।
0: सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, अदब दोस्तो, मैं ताडा अपना सुखराज सिकंदर हर बार की तरह दुआबा रेडियो अते हरबंस सिंह साहब जी ने इस नमाणे नूं फिर माण बख्शिया। मैं अपनी रचना लेके हाजिर हाँ। जदों मेरी मौत हुई, जदों मेरी मौत हुई एक वक्खरा नज़ारा सी, हर कोई रोंदा सी जिवें सब दा सहारा सी। जदों मेरी मौत हुई एक वक्खरा नज़ारा सी, हर कोई रोंदा सी जिवें सब दा सहारा सी। हर पासे शोभा मेरी सारे भर दे हंगारा सी, हर पासे शोभा मेरी सारे भर दे हंगारा सी। एक मैं ही कला सी हरेक नूं प्यारा सी, एक मैं ही कला सी हरेक नूं प्यारा सी। दुश्मन भी कोल आए, दुश्मन भी कोल आए, बड़े अथरू वहाउंदे सी, लगदा सी इंज मैनू कि कीती ते पछताउंदे सी। यारां दा सी यार कहिंदे, बंदा बड़ा नेक सी, यारां दा सी यार कहिंदे, बंदा बड़ा नेक सी। कोई मंदा ना बोले मैनू मिठी जबान हरेक सी, कोई मंदा ना बोले मैनू मिठी जबान हरेक सी। इस चंद्रे जगदा मैं, इस चंद्रे जगदा मैं जिवें मोह सारा ठगिया, मरिया बंदा किन्ना चंगा वो मैनू मरिया पता लग्या, वो मरिया बंदा किन्ना चंगा मैनू मरिया पता लग्या। एवें जीऊ के लंघाई, एवें जीऊ के लंघाई, जमदे मर जाते चंगा सी, सारे मैनू किन्ना चाहुंदे एक मैं ही बोलदा मंदा सी, सारे मैनू किन्ना चाहुंदे, सारे मैनू किन्ना।

जो भी वेखे खिड़ खिड़ जावे, भुल जावे ओ अपना दुखड़ा। कोमल मन ते शुद्ध हिरदे विच रब्बी रंग दहसदा मुखड़ा। जो भी वेखे खिड़ खिड़ जावे, भुल जावे ओ अपना दुखड़ा। जात

वैरी मीत च फर्क न कोई, हरख सोग दोए सम कर जाने। तेरे तोतले बोल प्यारे, हर इक नू पे देन सहारे।

ज्ञान दी जोत जगावन दे लई अंदर चात लगाउणा चंगा, मगर किसे दे लगन नालों अपना राह बनाउणा चंगा। मन बता दे पले दी खातर जावर ना।

घट बोलन दी आदत पाओ न बड़बड़ करना हुंदा चंगा। उलझलूल बोलन नालों चुप ताएं अपनाउणा चंगा। बड्डियां दा

0: किसान संघर्ष की के साथ जुड़ी हुई रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी, जिसके लिए मैं श्री हरबंस सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने देश में चल रहे ज्वलंत मुद्दे के प्रति जागरूक करने की पेशकारी शुरू की है। हमारे देश में 3 नए कृषि कानून जो बनाए जा रहे हैं वे कृषि किसान हितेशी नहीं है। आज हमारे देश के किसान ही नहीं बल्कि और कई देशों के किसान भी इस कृषि कानूनों के खिलाफ जंग में कूद पड़े हैं, तो क्यों न हम सब इनका साथ देकर अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे किसान भाइयों की हौसला अफजाई करें, क्योंकि हम सब भी इसी धरती माता के पुत्र हैं, किसान बनाम इंसान। जय किसान देवता, जय जयकार हो, सब तरफ तुम्हारा ही नाम हो। उपजा अनाज खाकर ही हमने जिंदगी पाई है, अपना जीवन और महल बनाया है, भूख प्यास और थकान से तूने अन्न उपजाया है, लहू पसीना अपना खेतों में बहाया है, पैरों में पड़े छाले ना किसी को दिखाए हैं, फटे पुराने कपड़ों में हल चलाया है। तेज धूप आंधी बारिश तूफान तूने सहा है, पर उफ ना कहा ना ही घबराया है। रात रात को खेतों की मेड़ पर रखवाली करके रात गुजारी है, परंतु क्या ये आज कृषि कानून बनाने वाली सरकार अंधियारी है? सीधा साधा किसान मिट्टी से ही इसका नाता है, तपती धूप में अपने आप को जलाकर बंजर भूमि पर फसल उगाता है, सोने सी लहलहाती फसल को देख मुस्काता है। फसल ही नहीं, ये नव जीवन देने वाली शक्ति है, सारे संसार का भरता इससे पेट है, जिसे उद्योग बनाम फैक्ट्रियों में अर्थव्यवस्था दौड़ती है। भगवान का समानार्थी पर्याय है मेहनती किसान, खेतों में हर कण है उसकी जान, खेतों में हर कण है उसकी जान, वारे महान पुरुष तू है किसान, वारे महान पुरुष तू है किसान। मैं सुनील कुमारी शर्मा, अंग्रेजी लेक्चरर, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल जसो माजरा से कविता पेश की है। धन्यवाद जी।
1: ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਮਲਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਮਲਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕਮਲਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
2: ਆਦਮੀ ਤੂੰ ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਨਾ ਬਣਾ ਤੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਭਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਮ ਕਾ ਤੂੰ ਸਹਾਰਾ अगर ना किसी का बना तो ये जीवन तेरा है ये बस नाम का। आदमी तू अगर आदमी ना बना तो ये जीवन

खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

0: खुदा करियर शेप होगा।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत मजा आया आज सारी गल्लां करके। बहुत ही वधिया जिहड़े विचार ने दोस्तां नाल सांझे कीते, बहुत खुशी हुई। तो
0: थैंक यू शर्मी जी, थैंक यू।
1: दोस्तों अज आपां ने गल्लां कीतियां, तुसीं सुन रहे सी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जी, IAS SDM दसूहा जी दे विचार आपां सुने अज। ते बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर दुआबा रेडियो वालों। ते इस तरह ही आपां दुआवां करांगे, साडे दोस्त इस तरह सुनते रहन। ते प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, ते बहुत जल्दी आपां फिर हाजिर होवांगे एक नवे प्रोग्राम के नाल, नवी शख्सियत के नाल। धन्यवाद बहुत बहुत, ते मुस्कुराते रहो, खुश रहो, रब रखा। ओके 1 2 3। हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों, प्रोग्राम सिक्ख्या ते रुजगार लैके मैं समरजीत सिंह शमी तुहाडी सेवा च हाजिर हाँ। तुसीं सुन रहे हो दुआबा रेडियो, तुहाडी अपनी आवाज़। दोस्तों सिक्ख्या ते रुजगार दे विच तुहानूं पता है कि असीं वक्-वक् जो मुद्दे ने जुड़े हुए विषय दे नाल, चाहे वह काउंसलिंग होए, चाहे वह रुजगार नाल जुड़ी हुई कोई गल होवे, उहदे उत्ते आपां चर्चा करदे हाँ, सिक्ख्या नाल जुड़ियां गल्लां करदे हाँ, एजुकेशन दे उत्ते गल करदे हाँ। तो इस सारे प्रक्रिया दे विच एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिहड़ा विषय है वो आंदा है पेरेंटिंग, जाने कि बच्चे का पालन पोषण। सो अज इस महत्वपूर्ण विषय के उत्ते गलबात करन लई साडे नाल जुड़े ने पैनलिस्ट डॉक्टर भावना गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब तुहाडा।
2: थैंक यू।
1: तो दोस्तों डॉक्टर भावना गुप्ता जी को चेयरपर्सन हैं टर्न अराउंड एजुकेशनल एंड कंसल्टेंसी सर्विसिज जलंधर, ते इस तो इलावा वो बतौर डॉक्टर भी प्रैक्टिस करते हैं, ते काउंसलिंग दे विच बहुत सरगर्म ने, ते इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वो दे रहे ने, ते स्टूडेंट्स नू करियर गाइडेंस दे विच उन्हां दा बहुत वड्डा जिहड़ा समां जिहड़ा लगता है, बहुत योगदान है उन्हां दा। ते विशेष तौर ते पेरेंटिंग वर्कशॉप्स वो ऑर्गेनाइज करते ने, ते उहदे विच मापिआं नू किवें जिहड़ा गाइड करते ने, इह अज आपां जाणांगे उन्हां कोलों। तो डॉक्टर साहब सब तो पहला तो जिहड़ा सवाल ये आउंदा है मन दे विच कि ये पेरेंटिंग की है, पालन पोषण की है, इहनूं आपां किवें डिफाइन करदे हाँ?
2: जी, पेरेंटिंग सब तो पहला सानू ये समझना चाहिए है कि सब तो कॉम्प्लिकेटेड जॉब और फुल टाइम जॉब है पेरेंटिंग।
1: जी
2: यदा कोई निर्धारित समा नहीं है, जब तक
1: जी
2: तुसी पेरेंट्स हो पेरेंटिंग चलती रहती है।
1: जी जी
2: एक बच्चे नू पैदा करना, उस दियां जरूरतां पूरियां करना, और जिस तरह आपां कहने हैं कि सारे इदां ही पलदे है,
1: जी जी
2: ये पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग इस तो वध के है कुछ।
1: जी
2: तुसी एक बच्चे नू वो बनाना जो तुसी बनाना चाहते हो, उसनू टाइम देना पैंदा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी
2: उहदे लई जो एफर्ट्स लगदियां है वो सब इस पेरेंटिंग दे विच आ जांदा है।
1: जी जी जी जी तो ये अपने आप दे विच ही उम्र भर चलण वाला मापिया
2: हाँ
1: लई
2: जी,
1: जिहड़ा काम है,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ते एक दिन वाला काम नहीं हैगा
2: हाँ
1: जी।
2: जी हाँ
1: अज
2: जी
1: इहदे उत्ते गल हो गई ते खत्म हो गई,
2: हाँ जी
1: ये तो जी। पर ही मतलब कि ये लिए तो फिर किमें आप इन्हों डिफाइन करा, हर बंदे का अपना सुभाव है,
2: हाँ जी
1: तो आपो अपने रूल आपो अपने जड़े तरीके अपने बच्चों पालन पोषण उन्होंने करते हैं,
2: हाँ जी
1: तो कि चीज़ा जड़िया ने वो सब उभर के आदि ने, किस तरह आप कहने टाइप्स यदि आ
2: हाँ
1: जाते
2: जी
1: हैं।
2: हाँ जी वैसे तो थोड़े बहुत फर्क दे नाल हर एक दा स्टाइल डिफरेंट है,
1: जी
2: पर मुख्य तौर पे चार पेरेंटिंग स्टाइल्स गिने गए हैं,
1: जी जी
2: जिन्हां विचों सब तो पहला जो अपने इत्थे आम चलता है जिसनों असीं कहने हैं अथॉरिटेरियन स्टाइल।
1: जी जी
2: अथॉरिटेरियन स्टाइल वो है जिस दे विच असीं बच्चियां नूं अपना हुक्म मनन दी ही तालीम दिंदे हैं,
1: जी
2: मैं तेनूं जो क्या बस।
1: ओके है
2: हाँ
1: वो होना
2: ओ
1: चाहिए,
2: ओके है,
1: वो ही होना
2: जे
1: चाहिए।
2: बच्चा क्वेश्चन करता है तो
1: जी
2: सानू लगता है कि वो अगे बोल रहा है, वो
1: जी
2: साड़ी इज्जत नहीं कर रहा।
1: जी जी जी जी
2: ये अथॉरिटेरियन स्टाइल है साड़े, असी
1: जी
2: उहदे नाल रीजनिंग नहीं करते, असी उहनू लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं करते,
1: जी जी जी
2: और सानू ये लगता है कि ये बच्चा साड़े कहने च नहीं है जे वो बार बार क्वेश्चन करता है या साड़े डिसीजन नू चैलेंज करता है।
1: जी जी जी
2: साड़े
1: बिल्कुल
2: कोले उहदे हर जवाब दा इक्को ही, उहदे हर सवाल दा इक्को ही जवाब हुंदा है क्योंकि मैं क्या,
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल
2: ये अपने आम चलता है,
1: ये सब तो ज्यादा पॉपुलर है
2: सब
1: मुझे
2: तो ज्यादा
1: लगता
2: पॉपुलर है। ठीक है,
1: है बिल्कुल
2: तुहानू सुन के किदां लग रहा है
1: जी
2: तुहानू आपे ही पता चल जाएगा कि ये किन्ना क होना चाहिए।
1: जी जी
2: ठीक है,
1: बिल्कुल
2: दूसरा है जिदे विच असी इहनू कहने अथॉरिटेटिव स्टाइल, ये पहले जिदी मैं गल की थी अथॉरिटेरियन है,
1: जी
2: सैकेंड है अथॉरिटेटिव,
1: जी
2: जेड़ा
1: जी
2: कि ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਹੈ,
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
2: ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ,
1: ਜੀ ਜੀ
2: ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
1: ਜੀ ਜੀ
2: ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ
1: ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ
2: ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਹੈ,
1: ਜੀ ਜੀ ਟੂ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ
2: ਟੂ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ,
1: ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
2: ਹੈ ਨਾ
1: ਜੀ।
2: ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,
1: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ,
2: ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
2: ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ।
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
2: ਇੱਕ ਹੈ ਥਰਡ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਿਸਿਵ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ।
1: ਪਰਮਿਸਿਵ
2: ਪਰਮਿਸਿਵ ਪਰਮਿਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ,
1: ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ,
2: ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਲਈਆਂ,
1: ਜੀ
2: ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ,
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
2: ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
1: ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ ਉਹ
2: ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
2: ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਬਣਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ,
1: ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ,
2: ਠੀਕ ਹੈ
1: ਬਿਲਕੁਲ।
2: ਫਿਰ ਇਹ ਅਨਇਨਵੋਲਵਡ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ, ਅਨਇਨਵੋਲਵਡ ਜਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
1: ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
2: ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ,
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ,
2: ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ,
1: ਜੀ ਜੀ
2: ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ,
2: ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ,
1: ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ,
2: ਉਹ ਜੁੜਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜੁੜਾਵ,
1: ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ,
2: ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ
1: ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ,
2: ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਜ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚਾਰ ਸਟਾਈਲ ਹੈ,
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ,
2: ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਵੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ,
1: ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
2: ਹਾਂਜੀ
1: ਦੋਨੋਂ ਤੇਰਾ
2: ਉਸ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜੁੜਦੇ ਹੈ,
1: ਜੀ ਜੀ,
2: ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈ,
1: ਜੀ ਜੀ,
2: ਬਜਾਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ,
1: ਜੀ ਜੀ,
2: ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ,
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਲੋਗ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੈਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ,
2: ਬਿਲਕੁਲ,
1: ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ
2: ਪਾਪੂਲਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ,
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ,
2: ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ,
1: ਜੀ ਜੀ,
2: ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਜੋ ਪੱਲੇ ਹੈ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਡੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ,
1: ਜੀ ਜੀ,
2: ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਓਬੀਡੀਅੰਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ,
1: ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ,
2: ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ,
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ,
2: ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ,
1: ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ,
2: ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ,
1: ਜੀ ਜੀ,
2: ਬੱਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ,
1: ਜੀ ਜੀ,
2: ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ,
1: ਬਿਲਕੁਲ
2: ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹ
1: ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
2: ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲੇ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ,
1: ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ,
2: ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ,
1: ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ,
2: ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ,
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल
2: ठीक है।
1: जी
2: जिस बच्चे दी ट्यूनिंग हो गई कि ए ओबीडियंस है, ये ट्यूनिंग है,
1: जी जी
2: फाइन
1: बिल्कुल
2: ट्यूनिंग, हौली
1: बिल्कुल
2: हौली हौली हौली इनू तुसी संस्कार को जो भी को,
1: बिल्कुल
2: ठीक है
1: जी
2: ना।
1: जी
2: जिस दी ट्यूनिंग हो जाती है वो यही सीख जाएगा।
1: जी बिल्कुल। ते वो जिहड़ा इच्चो बाहर आ गया वो थोड़ा हो सकता है डिवेलप भी हो जाए ते
2: हाँ जी
1: नवी गल भी सोचेगा।
2: बिल्कुल
1: बिल्कुल ये तो वाकई सही गल है जी। ते आम आपां कहिंदे आ इसे लड़ी दे विच जी आपां देखिए कि जे बच्चे नूं ढिल दे दित्ती
2: हाँ
1: तां
2: जी
1: वी वो बिगड़ जाएगा,
2: हाँ
1: जे
2: जी
1: ज्यादा कस दिता तां वी वो गड़बड़ होएगी बहुत ज्यादा।
2: बिल्कुल होएगी।
1: ये फिर किन्नी क सही गल होएगी कि डंडा पीर है बिगड़िया तिगड़िया का, जदों आपां कहिंदे आ बिगड़ गए बच्चे इन्हां नूं हुण इदां ही काबू करना पैणा है।
2: देखो बहुत ज्यादा मार ते बहुत ज्यादा प्यार दोनों की गल करेंगे।
1: जी
2: पहला जेड़ी तुसी गल कही डंडा पीर है,
1: बिल्कुल
2: है ना।
1: बिल्कुल हाँ जी।
2: देखो मेरा ये मानना है कि हार्श डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए।
1: जी
2: डिसिप्लिन दे नाम ते कि ए इदा ही करना है।
1: जी जी बिल्कुल।
2: फ्लैक्सीबिलिटी बहुत जरूरी है। कई बार थानू वो चीज़ ठीक लग रही होंगी है पर जब तुम दूसरे का व्यू पॉइंट सुनोगे तो लगेगा नहीं ये ठीक कह रहा है, तो फ्लैक्सीबल भी होना चाहिए जे थानू अंदरों लग रहा है। कई बार असं की कहने कि गल तो तेरी ठीक है पर होंगे एवं ही है।
1: बिल्कुल ठीक है,
2: है ना।
1: बिल्कुल
2: तेरिया सारिया गल्ला ठीक है पर दुनिया व्यवहार समाज इदा ही होंगे,
1: इदा ही चलू,
2: इदा ही चलूगा।
1: जी जी जी
2: ये ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल
2: कोई तो बदलेगा ना, बदलाव एक तो शुरू होंगे।
1: ठीक
2: है हार्श डिसिप्लिन आई डोंट एग्री विद।
1: जी जी
2: ते इस दे विच मतलब फ्लैक्सीबिलिटी होना बहुत जरूरी है। और बीटिंग मार कुटाई है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जेड़े बच्चे नू पहली गल तो ढीठ हो जाते बच्चे मार खा खा, क्योंकि दो छप्पड़ पै जाएंगे और की होना है। इस तो बाद ज्यादातर बच्चों नू मैं कहंदे सुनया कंडीशनिंग होगी। ठीक है
1: जी जी।
2: और दूसरी गल सब तो वड्डा नुकसान इसका समाज से पैंदा है क्योंकि ये बच्चे वड्डे होके अग्रेसिव बनते हैं।
1: जी जी जी जी।
2: और वो अपने सारिया समस्यावां नू झगड़े नाल ही सुलझाना चाहते हैं। उन्होंने लगता है इदा ही होंगे दो चित्र मार के जिन्हों मर्जी सीधा कर लो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हाँ उन्होंने कर कर जाते
2: हैं। हाँ जी वो यही चीज सीख जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: ठीक है। दूसरी गल है बहुत ज्यादा प्यार। कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्यार भी बच्चों नू बिगाड़ देंदा है। मैं यही कहना चाहनी हूँ बच्चों नू प्यार नहीं बिगाड़ता, बच्चों नू बिगाड़ती है लीनियंसी छूट।
1: जी जी जी बिल्कुल।
2: प्यार नहीं बिगाड़ता, प्यार नाल बंधदा बच्चा तुहाडे नाल।
1: बिल्कुल
2: प्यार ते छूट विच फर्क है। तुसी प्यार तुसी छूट नू प्यार दा नाम दे दिता, तू कर ला जो मर्जी असी है गए हैं।
1: हाँ,
2: वो छूट है, वो प्यार नहीं है। उत्थे तुसी कंफ्यूज्ड हो,
1: बच्चे दा इच कोई
2: बच्चे दा कोई कसूर नहीं है।
1: बिल्कुल
2: उत्थे तुसी कंफ्यूज्ड हो कि तुहानू ये लगता है कि ये मैं प्यार कर रहा। प्यार बिल्कुल नहीं बिगाड़दा, तुसी जिन्ना मर्जी करो।
1: जी जी जी बिल्कुल सही है। तो ये तो वाकई एक चीज़ जी सामने उभर के आती है कि पेरेंट्स का जोड़ा प्रभाव है बच्चे की शख्सियत पर पैंता है और उन्होंने ही एक तरह ना अक्स वो बनते हैं समाज अगर कि बनेगा। ये पालन पोषण बच्चे का किस तरह का हो रहा है घर में वो अगर गल जुड़ जाती है जाके। तो आप देखा कि वक् वक् टाइप्स दियाँ पेरेंटिंग जीडिया ने पालन पोषण दियाँ जीडिया ने तरीके ढंग तरीके अपनाए जाते हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो थोनू जोड़े ज़्यादातर काउंसलिंग लिए जो तुम जाते हो तो को सब तो वह कहो जे केस जोड़े आते हैं कि इन्हों नजिठते हो उन्होंने काबू करते हो तो उन्होंने बैलेंस करते हो।
2: देखो डिफरेंट एज ग्रुप्स के रिलेटिड डिफरेंट डिफरेंट केसिज होंगे।
1: जी
2: रीसेंटली जिस तरह हूँ साढ़े नाल एक बार होया कि कोई 9th 10th का बच्चा है।
1: जी
2: एवरेज है वो पढ़न दे विच।
1: जी जी
2: पेरेंट्स दी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है।
1: जी
2: पता नहीं की बन जाए और एक्सपेक्टेशंस दा रीजन की है क्योंकि मेरे जान पहचान दे जिन्ने भी लोग है उन्हां दे बच्चे बहुत हाईली क्वालिफाइड है ते मैं उन्हां दे नाल विचरना है।
1: जी जी
2: इस करके मेरा बच्चा भी हाईली क्वालिफाइड या किसी अच्छी लाइन च या एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन च होना चाहिए।
1: बिल्कुल
2: क्योंकि साढ़े घर च सारे डॉक्टर इंजीनियर है तो मेरा भी होना चाहिए।
1: ये भी उत्थे पहुंचे जरूर भावे जिवें मर्जी होए
2: पर हर बच्चे की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी।
2: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੈ,
1: ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
2: ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
2: ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ,
1: ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ।
2: ਹੁਣ मैं इस केस नू बहुत लंबा मतलब फॉलो किया
1: जी
2: और मैं ये पाया कि पेरेंटिंग दे विच बहुत प्रॉब्लम्स है। उन्हों
1: जी
2: सारा दिन 1 घंटा लेक्चर देंदे है,
1: जी ब्रेन वॉश हो रहा है उधर।
2: उदा ओही चीजा रिपीट होंदिया, वो बच्चा फेड अप हो गया।
1: जी
2: वो
1: जी
2: कहंदा नहीं पढ़ना, मैं
1: हाँ बिल्कुल
2: हुण पढ़ना ही नहीं, मैं तो ये कर नहीं सकता जो तुसी कह रहे हो,
1: बिल्कुल ठीक
2: मैं तो
1: है
2: हुण पढ़ना ही नहीं।
1: जी जी जी बिल्कुल ठीक है
2: जो बच्चा साढ़े नाल गल करता है
1: जी जी
2: असि ओनू मोटिवेट करते हैं, वो
1: जी
2: असि ओनू ये कहने हैं कि तू 10वीं किसी तरीके नाल कर लिया, उस तो बाद तू जो करना चाहना तेन ऑप्शन मिलनगिया।
1: जी
2: साडा सिस्टम इदा दा है कि 10वीं तक तुसी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं,
1: पढ़ने पैने हैं,
2: पढ़ने पैने हैं,
1: बिल्कुल,
2: बट उस तो बाद ऑप्शन है, फिर तू वो करें जो तेरा दिल करता है, ठीक है, वो मोटिवेट होंदा है, वो खुशी खुशी कर जांदा है,
1: जी
2: वो
1: जी
2: कर जांदा है, उन्हें फिर वही
1: फिर लैक्चर शुरू हो जाता है, पुरानी गल जी सीडी पै जाती है वो भी। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये एक जो है फोर्स्ड कह लो उन्होंने उत्ते किया जाता है, जो अपने
2: हाँ जी
1: थोपिया जाता है उन्होंने अपनी
2: जाता
1: बंड
2: है।
1: चुकाते हैं, कई बार ये होंगे कि माता पिता जो नहीं बन सके जीवन च बनना चाहते थे, चाहते ही
2: बिल्कुल
1: बच्चा बने, वो
2: बिल्कुल
1: घट्टो घट वो तो बने,
2: अपनी उम्मीदा का भार लद दें बच्चों से।
1: हाँ जी हाँ जी,
2: बच्चे एक इंडिविजुअल एंटाइटी है,
1: जी जी
2: तो
1: बिल्कुल
2: ये मनना पड़ेगा, वो तुहाडे बच्चे है ठीक है,
1: जी
2: पर वो
1: जी
2: एक वक्रा ह्यूमन बीइंग भी है,
1: बिल्कुल
2: जिहदी
1: बिल्कुल
2: डिजाइनिंग
1: बिल्कुल
2: कुछ डिफरेंट है तुहाडे नालों।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो मन के चलना पैना,
2: हाँ
1: जे जिन्नी देर तक ये गल नहीं आएगी।
2: हाँ जी
1: ते एक होर जिहड़ा आपां कहिंदे ना बलदी ते तेल पै जांदा है, ते आम मैं कई बार बच्चों मिलता है जां घरां विच आम आपां देखते हैं, एक सब तो वड्डा डायलॉग हुंदा है माता पिता का कि लोकां दे बच्चे नूं देखो।
2: हाँ जी कंपैरिजन
1: कंपैरिजन, ये किन्ना क जरूरी है?
2: बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल अनहेल्दी है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लोगों के बच्चे की भैन भरावां च नहीं होना चाहिए,
1: बिल्कुल बिल्कुल जी
2: ठीक है, जैलसी डिवेलप होती है ये नाल,
1: जी जी बिल्कुल
2: ठीक है, कई बार वो तुहाडा कोई बहुत अच्छा फ्रेंड होंदा है, बार बार उसकी एग्जाम्पल तुहानू दित्ती है ना, तुहानू उस तो चिढ़ाउण लग जाती है कि जदों देखो ये इदां करदा तां मेरे नाल इदां हुंदी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: तुसीं उस दीआं अचीवमेंट्स ते खुश नहीं होंदे,
1: बिल्कुल
2: तुसीं जैलस होना सीख जांदे हो,
1: वो एक तरह की गिरावट आनी शुरू हो जांदी है, नेगेटिविटी जिहड़ी है।
2: हाँ जी
1: लेकिन ये बहुत ही व्यापक है,
2: बहुत व्यापक है, क्योंकि रीस करन दी आदत है सानू,
1: बिल्कुल बिल्कुल जी,
2: असि ओही चीज अगे इनकलकेट करते हैं,
1: जी जी बिल्कुल, बिल्कुल।
2: बच्चियां नू शुरू शुरू दे विच सारियां नू प्रॉब्लम होंदी है जदों उन्हां नू किसे नाल कंपेयर किया जाता है, शुरू शुरू दे विच ओह कहिंदे भी है कि साडे नाल इदां ना करो,
1: जी
2: पर
1: जी।
2: क्योंकि पेरेंट्स नहीं हटदे, क्योंकि उन्हां नू डराया धमकाया जांदा है और इस नू डिसओबीडियंस मन्निया जांदा है, बच्चियां दी हौली हौली फाइन ट्यूनिंग हो जाती है और अल्टीमेटली ओही करन लग जांदे है।
1: कई बार ये भी तो हो सकता है कि जो बच्चा देखे कि चलो हूँ मैं उन्होंने बच्चों वर्गा नहीं है जी छो परे,
2: हाँ जी
1: तो वो जो अपने राह तो भी उतर जाता है,
2: बिल्कुल उतरता है, मैं हूँ ही तुम्हें जी एग्जाम्पल दी,
1: ये तो कुछ हो रहा है,
2: बिल्कुल हो रहा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो ये जी अजक जे मापे आ जी हूँ जनरेशन चल रही है, अजक वट्सएप का इंटरनेट का जमाना है,
2: हाँ
1: जो हूँ माता पिता ने ये बहुत ओवर बिजी ने,
2: हाँ जी
1: तो पहला वाले भी बिजी से,
2: हाँ
1: वो अपना चलो कम कार व्यार करते,
2: हाँ
1: पहला तो हूँ च कि जो फर्क तुम वेखते हो?
2: बहुत फर्क है, देखो इन्ना टेक्नोलॉजी एडवांस है, सब कुछ है,
1: जी जी।
2: एक तरह नाल देखा जाए तो अगर तुसी सोशल मीडिया से एक्टिव हो तो तुहाडा इस तरह टाइम बचता है कि तुहानू जाके नहीं मिलना पैंदा, तुसी घरे ही सारिया नू हैलो हाय एक बारी सवेरे करके निपट जांदे हो,
1: वो एक केड़ा वादा है,
2: हाँ वो इहदा वादा है जे इसनू पॉजिटिवली लो,
1: जी जी।
2: लेकिन अगर तुसी पिंग होई नाल दी नाल फोन चुकिया सारे काम छड़ के तुसी मैसेज देखिया फटाफट, नहीं एक चीज का टाइम होना चाहिए कि ए टाइम है मेरा, इस टाइम जिदा बच्चे स्कूल गए है या ट्यूशन गए है, ए मैं हुन घर दे काम तो फ्री है, ए 1 घंटा मैं इतने लगा सकती हूँ, प्रायोरिटी देनी पेगी तुहानू, तुसी सैट करना है कि तुहाडे लई प्रायोरिटी की है, जे तुहाडे लई प्रायोरिटी सोशलाइज करना है, मार्केट जाना है, सहेलियां नू मिलना है, तो फिर तुसी बच्चियां तो ये एक्सपैक्ट ना करो कि उन्होंने पढ़ाई और जो तुसी कहने वो प्रायोरिटी होवे,
1: जी
2: क्योंकि
1: जी जी
2: तुसी अपने बच्चों के रोल मॉडल हो, बच्चा जो देखता वही करता है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
2: जे तुहाडे लई हमेशा तुसी उन्हें यह कहने हो नहीं इत्थे तां जाना ही पैना है, नहीं हुणे आए आ हुण तुसी इन्हां नूं अटेंड करो, वो यही सीखेगा कि पढ़ाई पिछे पाई जा सकती है,
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
2: जे तुसी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस उन्हां दी पढ़ाई लई छड्ड दिओ वो सीखेगा कि पढ़ाई ही प्रायोरिटी है,
1: वो स्किपिंग करेगा नहीं ते,
2: हाँ
1: वो कहेगा छड्डो परे,
2: तुसी सोचोगे कि रिश्तेदार आए अज तू छुट्टी लै लै,
1: हाँ जी हाँ बिल्कुल
2: वो यही सीख जाएगा। कि रिश्तेदारां दे आने ते छुट्टी ले दी है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो पूरी जिंदगी उदा फिर एक पार्ट एंड पार्सल बन
2: हाँ
1: जाएगा कि
2: जी
1: वो इंपॉर्टेंट काम छड़ भी सकता है,
2: हाँ जी
1: और मैनू लगता नहीं कि वो करियर कोई ग्रो करेगा जो जहाँ
2: बिल्कुल
1: बच्चा जो मन च गल आ गई है।
2: बिल्कुल
1: तो आपां जिहड़ी गल करते सी कि व्हाट्सएप वाली, तो आप बच्चे नू टीवी लैके देता पर टाइम नहीं दिता,
2: हाँ
1: टीवी
2: जी
1: वर्सेस टाइम का एक मुद्दा आता है,
2: हाँ जी
1: यही आप हमने गल भी की
2: हाँ जी
1: है। ये जो आप होर देखिए कि जो 4 मैंबर घर च बैठे आ, पेरेंट्स भी आपस में एक दूजे नू भी वो व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं, तो वो भी वो तो बिल्कुल ही इग्नोर हो जाता है बच्चा जरा,
2: बिल्कुल होंगे इग्नोर, बिल्कुल
1: ये तो
2: होंगे।
1: कैसे बचाया जा सकता है, कितनी गंभीर गल है।
2: ये बहुत गंभीर गल है, जे तुसी चाहते हो कि बच्चे साढ़े नाल कनेक्टेड रहन और
1: जी
2: वो ये
1: जी
2: फील भी करन, सिर्फ उपरों उपरों कनेक्टेड नहीं है, तां
1: जी जी जी जी
2: क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बच्चियां नाल बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
2: क्वालिटी टाइम स्पेंड करन दा मतलब हैगा ये नहीं हैगा कि वो जो भी कर रहा है उस तो तुहाडी नज़र होनी चाहिए है। सपोज वो होमवर्क ही कर रहा है,
1: जी जी
2: तुसी उहदा कोई सवाल अड़ गया, तुसी
1: बिल्कुल
2: उसका सवाल जड़ा हैगा वो करता, तो की होएगा शायद अगला फेर ना कर सके। तुसी चीज़ इस तरह करनी है कि वो तरीका सीखे और फिर
1: वे
2: वो नाल दे
1: हाँ
2: बाकी भी कर सके,
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल
2: ठीक
1: बिल्कुल,
2: है।
1: फंडा फंडे क्लियर होने चाहिए।
2: एको तुसी कहोगे मैं तो वो होमवर्क ही करता, ये भी क्वालिटी टाइम दिता, उन्हें
1: बिल्कुल
2: वो लर्निंग नहीं हुई।
1: बिल्कुल, सगो खोलिया
2: हाँ
1: कुछ
2: वो उन्हें टीचर ने देखना सीगा कि ये बच्चा कितना सीख रहा, होमवर्क वो टीचर ले सी
1: जी
2: एक
1: जी
2: एक
1: जी जी
2: स्टैंडर्ड एक पैरामीटर,
1: जी जी
2: तुसी
1: जी
2: वो
1: जी
2: खराब करता,
1: बिल्कुल
2: टीचर ने
1: बिल्कुल
2: भी वो प्रोग्रेस नहीं नोट की। तुसी
1: बिल्कुल
2: सोच रहे हो कि मैं अपने बच्चे नू टाइम देने हैं, मैं इन्हां नू होमवर्क कराना है,
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
2: बच्चे दी भी लर्निंग नहीं हुई,
1: बिल्कुल
2: दिस इज नॉट क्वालिटी टाइम।
1: वो तो बहुत बड़ा लॉस
2: हाँ
1: उन्होंने एक तरह
2: जी
1: से कर देता है,
2: हाँ जी
1: बिल्कुल बिल्कुल जी
2: ठीक है। और बाकी फिर वही है, जिन्ना ज्यादा तुसी टीवी देखते हो, व्हाट्सएप करते हो, टेक्नोलॉजी दे नाल जुड़े रहते हो, बच्चों से घट टाइम, टाइम तो उन्ना ही है 24 घंटे, चाहे उन्होंने इधर
1: बिल्कुल
2: लगा लो चाहे उन्होंने उधर लगा लो,
1: बिल्कुल
2: प्रायोरिटी सेट करनिया पैनगियां।
1: वो तो जरूरी है जी।
2: हाँ जी
1: ते केड़ियां जिहड़ियां होर भी जिहड़ियां गल्लां ने आपां जे ध्यान देना होवे उहनां दे उत्ते, एक ते टाइम, क्वालिटी टाइम,
2: हाँ जी
1: क्वालिटी टाइम दा होना ते मैनूं लगदा है सब तो पहली शर्त ही होनी
2: सब तो
1: चाहीदी
2: पहली
1: है।
2: शर्त है।
1: इहदे नाल उहनां दा जिहड़ा डाइट दा जां
2: हाँ
1: बच्चिआं दा
2: जी
1: उहनां नूं खाण पीण तों उहनां दी
2: बिल्कुल
1: पैंट कंपनी च पै गया जी
2: हाँ
1: बच्चा,
2: जी
1: ये किवें हुंदा है, बैड कंपनी च चला गया बच्चा ते फिर वो वापस कैसे आएगा।
2: पहली गल तो बैड कंपनी च बच्चा उदों जाता है जदों उन्हों पता है कि मेरे उपर मोनिटरिंग नहीं है।
1: जी, ठीक है
2: अगर एक बच्चा डेली आके अपना रूटीन थोड़े नाल डिस्कस करता है तो उन्होंने छोटिया छोटिया चीज़ों तो पता चल जाता है कि हो रहा है लाइफ च,
1: जी जी बिल्कुल
2: तुसी उन्हों बहुत इनिशियल स्टेजेस से रोक सकते हो,
1: जी,
2: ठीक है। बैड कंपनी च फिर भी अगर वो चला गया बाय चांस,
1: जी,
2: पर तुहाडे नाल जुड़ाव है, गलबात करता है, तुसी अपनियां गल्लां बातां दे नाल अपनी कन्विंसिंग पावर दे नाल उन्हों मोड़ लिया सकते हो, पर अगर
1: बिल्कुल
2: तुहाडे विच कनेक्ट नहीं है
1: हाँ
2: ना वो गल करेगा ना तुहानू पता चलेगा, कंपनी बैड है होंदी जाएगी, आदतां
1: बिल्कुल,
2: विगड़ जाएंगियां, वापस लियाना मुश्किल है।
1: वो तो एक तरह नाल कह लो उन्हों पर गवा लिया,
2: हाँ जी
1: वो भीड़ विच गुम हो गया है,
2: बिल्कुल
1: तो फिर आप जिहड़े दुख जिहड़े वो शुरू है
2: हाँ
1: जिंदगी दे
2: जी
1: विच दुखी जिहड़े आ। एक दुख तो मैनूं याद आउंदा है कि ये भी गल है कि साढ़े बच्चे सानूं ज़्यादा दुखी करते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं जी, बाकी देख लो वो पहला भी गल की कि लोगों के बच्चे तो बहुत सियाने हैं पर साढ़े ये तो दुखी इन्ना करते हैं कि पुछो ना, ये जी शरारत ने बच्चे दियाँ, इनू आप जे आप छोटे बच्चों देखिए उदों कुछ अलग तरह दियाँ ने, बड़े होंगे जाते हैं तो उन्होंने सवाल पूछण की जी प्रवृत्ति भी आप लगभग खत्म ही कर दें कि ये नहीं पुछीदा इदा नहीं करीदा ये नहीं हैगा, तो की करना चाहिए उस वे पेरेंट्स नू जो बचपन के बच्चा छोटा है।
2: हाँ जी बहुत छोटे बच्चे तो ही जदों तुहाडी गलबात समझदा है, एक्चुअली
1: जी
2: बहुत छोटा बच्चा भी समझदा है, देखो कुछ महीनों का बच्चा भी समझदा है कि कोई मैनू स्माइल कर रहा है कि कोई मैनू अखां कढ रहा है, और रिस्पॉन्स
1: बिल्कुल
2: दिंदा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
2: ये सच्चाई है।
1: हाँ जी
2: असीं स्माइल करदे हां वो भी करदा है, जे असीं उन्हों झिड़कदे हां वो डरदा है थोड़ा
1: हाँ
2: जा
1: बिल्कुल
2: करदा है, कुछ महीनों का बच्चा भी, तो उस तो उस दौरान ही उसकी पेरेंटिंग एक्चुअली स्टार्ट हो जाती है,
1: वो शुरू हो चुकी है,
2: शुरू हो चुकी।
1: जी जी बिल्कुल
2: जिहड़े पेरेंट्स बच्चे नाल उस टाइम गल्लां करदे है
1: जी जी
2: वो बच्चा उही गल्लां सीखदा है। कई
1: बिल्कुल
2: मदर्स होंदियां उह करी ही जांदियां गल्लां कुछ आ मेरा बच्चा खाएगा नहाएगा सोएगा लाइक दैट ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: वो सिख रहा है वो ऑब्जर्व कर रहा है
1: जी जी जी
2: मदर खुश है बच्चा
1: जी
2: जो भी कर रहा है उदे विच ओह खिज नहीं रही है
1: जी जी जी बिल्कुल
2: ठीक है वो इन्वॉल्व हो रही है कोई गल नहीं कह के कर रही है
1: जी जी
2: बच्चा ठीक है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
2: एक है कि एक मदर हैगी वो खिज रही है हुन इन्हें फिर सुसु करता हुन
1: हाँ
2: इन्हें उल्टी कर देती
1: बिल्कुल
2: हुन इन्हें
1: 50 की त्योड़ियां पालियां
2: हाँ
1: ते उन्हों कुड़ी जाना है
2: हुन मैनू ये करना पड़ेगा हुन मैनू वो करना पड़ेगा मेरी तो
1: हाँ
2: जान ही औखी हो गई वो
1: हाँ
2: यही बन जाएगा एक रूटीन।
1: जी जी जी
2: फिर
1: जी
2: मैं कहूंगी फिर प्रॉब्लम कितने आई पेरेंटिंग च आई ना
1: उथे आई बिल्कुल बच्चा ते कोरिस लेट
2: हाँ
1: सी
2: बच्चा
1: उन्होंने
2: कोरिस लेट सी
1: जी जी बिल्कुल
2: जदों तुसी उस दियां एक्टिविटीज च इन्वॉल्व होए जो जो ने कीता उस च खुशी महसूस कीती कि
1: बिल्कुल
2: चलो साडे घर भी ये एक्टिविटी होई
1: हाँ
2: कोई
1: बिल्कुल
2: खलारा पिया कोई बच्चा है तां खलारा पएगा
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: है ना। एक तुसी बहुत दुखी हो गए कि जदों देखो खलारा ही पिया रहिंदा है ओही सिचुएशन है कोई
1: जी
2: किस तरह रिएक्ट कर रहा है कोई किस तरह
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: बच्चा उस हिसाब नाल बन रहा है
1: तो वह तो बहुत ही अलर्ट होना पैना उन्होंने पेरेंट्स मैं लगता जागण की लड़ है चेतना की लड़ है कि क्योंकि इस बारे कोई भी स्कूलों भी नहीं दसिया जाता कोई यहोजा स्टडी का साडा पार्ट भी नहीं है जो पालन पोषण वाला जो कही कि उन्होंने पता हो कि हाँ ये सानू थोड़ा जा संभल के काम करना चाहिए संभल के बच्चों डील करना चाहिए। तो दोस्तों आप गल्लां कर रहे हैं बच्चों के पालन पोषण बारे डॉक्टर भावना गुप्ता जी के नाल। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही कमाल दी गल्लां जिहड़ियां सांझियां कीतियां गल्लां हैगियां साडे कोल पहलां ही लेकिन जिवें इन्हां नूं इलैबोरेट किया जिवें फोकस करते हैं आप ये वाह कमाल सी। डॉक्टर साहब तुसीं जिहड़े साडे दोस्त सुन रहे ने जिहड़े मापे ने ईवन बच्चे भी सुन रहे ने तो उन्हां नूं की सुनेहा देना चाहोगे?
2: मैं यही सुनेहा देना चाहवांगी कि ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣੋ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ
2: ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
1: ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
2: ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ
1: ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
2: ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ
1: ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ
2: ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ
1: ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
2: ਜੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
2: ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ
1: ਬਿਲਕੁਲ।
2: ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ
2: ਠੀਕ ਹੈ
1: ਬਿਲਕੁਲ
2: ਅਚਾਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਅੱਜ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ
1: ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
2: ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ
1: ਬਿਲਕੁਲ
2: ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਲੱਗੇ
1: ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ
2: ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ?
2: ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ YouTube ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ।
1: ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਫੜੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਅੱਡੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ।
2: ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਤੇ ਗੇਮਸ ਹੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
1: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
2: ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰੇ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ
1: ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।
2: ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ
1: ਜੀ
2: ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਣਾ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਮੋੜਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭਾਵਨਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇਤਨੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ
2: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ
1: ਸਰ।
2: ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵਾਕਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ
1: ਜੀ
2: ਮੈਨੂੰ ਇਹ
0: ਜੀ
2: ਮੌਕਾ
0: ਬਿਲਕੁਲ,
2: ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
1: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।